na wɔkɔn mu bu wɔ sɛ wɔmfa mmara me awurade nkyɛn na mɛma wɔahome